नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम में हम जब भी हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय होता है। तो आज भी श्रोता साथियों एक ऐसे विषय को लेकर हाजिर हुए हैं। आज का साथियों हमारा विषय है जो दिल में है उसे शब्दों में कहो। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है। तो उसी दस्तूर को निभाते हुए आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में आपकी अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुकी हूं कि आज हम बात करने वाले हैं जो दिल में है उसे शब्दों में कहो। जी हां श्रोता साथियों, हम रोज बहुत कुछ महसूस करते हैं, कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी किसी अपने की याद। लेकिन क्या श्रोता साथियों, हम हमेशा अपनी भावनाओं को किसी से कह पाते हैं? कई बार शब्द हमारे मन में होते हैं लेकिन होठों तक आ ही नहीं पाते। ऐसे में श्रोता साथियों, एक कागज और कलम हमारे बहुत अच्छे साथी बन सकते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही बच्ची की है जिसके मन में बहुत सारी बातें थी लेकिन वह उन्हें किसी से कह नहीं पा रही थी। तो चलिए श्रोता साथियों, सुनते हैं जो दिल में है उसे शब्दों में कहो।
1: माँ?
2: हाँ बेटा, क्या हुआ?
1: कुछ नहीं।
2: कुछ नहीं? चेहरे से तो लग रहा है कि मन में बहुत कुछ चल रहा है।
1: नहीं माँ, मैं ठीक हूँ।
2: अच्छा तो बताओ कि जब से तुम स्कूल से आई हो तुम्हारा मन इतना चुप क्यों है?
1: बस ऐसे ही।
2: मीरा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या बेटा?
1: हाँ, लेकिन पता नहीं चल रहा कैसे कहूँ माँ।
2: बेटा, जो मन में है वैसे ही कह दो। हर बात को सुंदर शब्दों में कहना जरूरी तो नहीं होता ना।
1: माँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब किसी को बताने जाती हूँ तो आवाज ही नहीं निकलती।
2: अरे, ऐसा बहुत बार होता है क्या कि तुम अपने मन के अंदर की बात अंदर ही दबा कर रख लेती हो? बेटा, ऐसा करना ठीक नहीं है।
1: तो फिर मैं क्या करूँ?
2: एक काम करो।
1: काम? वो क्या?
2: आज तुम मुझे

0: पत्र लिखो।
1: पत्र? लेकिन माँ आप तो यही बैठी हैं।
2: हाँ बेटा, बैठी तो तुम्हारे सामने ही हूँ, लेकिन पत्र सिर्फ दूर रहने वाले लोगों के लिए नहीं होता। पत्र अपने मन की बात कहने का एक अच्छा तरीका होता है।
1: लेकिन मैं आपको लिखूंगी क्या?
2: जो तुम बोल नहीं पाती वही लिखना।
1: लेकिन मेरी लिखी हुई बात आपको अच्छी नहीं लगी तो?
2: बेटा, पत्र परीक्षा की कोई कॉपी थोड़ी है कि उसमें अच्छे बुरे अंक मिलेंगे। उसमें तुम्हारे मन की सच्ची बात होनी चाहिए।
1: लेकिन अगर मुझे गुस्सा आया हुआ होगा तो?
2: लिखो कि आज मुझे गुस्सा आया।
1: और अगर मुझे किसी बात से डर लग रहा होगा
2: तो वो भी लिख दो कि आज मुझे डर लगा।
1: और माँ, अगर मुझे किसी की याद आ रही होगी तो क्या लिखूंगी मैं?
2: तो भी लिखना कि आज मुझे आपकी याद आई।
1: इतना आसान है?
2: बिल्कुल बेटा, भावनाएं छिपाने से बड़ी नहीं होती, उन्हें समझने और व्यक्त करने से मन हल्का होता है।
1: क्या माँ मैं अभी लिख सकती हूँ?
2: हाँ क्यों नहीं, जल्दी लिखो।
1: लेकिन पत्र कैसे लिखूं?
2: जिसके लिए तुम्हारे मन में बात है कोई, उसके लिए।
1: मैं अपनी दादी को लिखूंगी।
2: बहुत अच्छा, काफी दिनों से तुम उन्हें याद भी कर रही हो।
1: हाँ माँ, फोन पर बात तो हो जाती है, लेकिन उनसे बातें करने के बाद भी लगता है कि कुछ कहना बाकी रह गया है।
2: अच्छा बेटा, तो कोई बात नहीं, आज वो बाकी सारी बातें कागज पर लिख देना।
1: मैं अभी जाकर कागज लेकर आती हूँ और लिखती हूँ।
2: लिखो, मैं यहीं हूँ, तुम्हें किसी शब्द को लेकर परेशानी हो तो पूछ लेना।
1: ठीक है माँ। अरे माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करूं।
2: अरे बेटा, जैसे तुम उनसे बात करती हो वैसे ही।
1: अच्छा, जैसे कि प्यारी दादी?
3: हाँ।
1: प्यारी दादी, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। पिछले रविवार को जब आपने मुझे फोन किया था ना, तब मैं ठीक से बात नहीं कर पाई, मुझे बाद में बहुत बुरा लगा।
2: देखा, तुम्हारे शब्द जो है वो खुद ब खुद आने लगे ना।
1: हाँ माँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है।
2: लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम अपने मन को जगह दे रही हो।
1: माँ, मैं यहाँ पर एक और बात लिखूं?
2: हाँ जरूर लिखो।
1: तो प्यारी दादी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपके साथ बहुत समय बिताऊंगी।
2: बहुत सुंदर।
1: माँ, क्या मैं आपको भी एक पत्र लिख सकती हूँ?
2: मुझे?
1: हाँ हाँ आपको।
2: लेकिन मैं तो रोज तुम्हारे साथ ही रहती हूँ बेटा।
1: इसलिए ही तो ना माँ, आपसे रोज बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन हर बार कह नहीं पाती।
2: तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आज लिख दो।
1: लो माँ, ये रहा आपका पत्र।
2: मेरे लिए?
1: हाँ, लेकिन अभी मत पढ़ना।
2: क्यों बेटा?
1: पहले मुझे बताना है कि मैंने इसमें क्या लिखा है।
2: अच्छा बताओ।
1: माँ, मैंने इसमें लिखा है कि मेरी प्यारी माँ, जब आप मुझे डांटती है तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन जब आप मेरे बाल बनाती हैं, मेरे साथ बैठती हैं और मेरी बातें सुनती हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डांटने से पहले एक बार मेरी बात भी सुन लें।
2: मीरा,
1: आप नाराज तो नहीं हो गई ना माँ?
2: नहीं बेटा, बल्कि मुझे खुशी हुई कि तुमने अपने मन की बात मुझसे कही।
1: सच?
2: हाँ, अगर तुम यह बात कभी नहीं कहती तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम क्या महसूस करती हो।
1: तो क्या अब से मैं जब भी कुछ महसूस करूँ तो मैं एक पत्र पर लिख सकती हूँ?
2: बिल्कुल, खुशी हो तो लिखो, दुख हो तो लिखो, किसी बात पर गर्व हो तो लिखो, कोई गलती हो जाए तो भी लिखो।
1: और गुस्सा?
2: गुस्सा भी लिख सकती हो, लेकिन किसी को चोट पहुंचाने वाले शब्द लिखने के बजाय बेटा आप यह लिखना कि तुम्हें गुस्सा क्यों आया।
1: इससे क्या होगा माँ?
2: अरे बेटा, इससे तुम अपने मन को समझना सीखोगी।
1: मतलब पत्र सिर्फ किसी को भेजने के लिए नहीं होता?
2: नहीं, पत्र बेटा अपने आप से बातचीत करने का भी एक सुंदर तरीका है।
1: तो मैं तो एक डायरी भी रखूंगी।
2: ये भी बहुत अच्छी बात है बेटा।
1: आज से माँ मैं रोज अपने मन की बात एक डायरी में लिखूंगी।
2: जरूर लिखना, और याद रखना कि तुम्हारी लिखी हर बात सुंदर है क्योंकि वह तुम्हारे मन से निकली है।
1: माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे बताया कि हर बात किसी के सामने अगर नहीं बोली जाती है तो हम उसे पत्र पढ़ लिख कर समझ सकते हैं और अपनी भावना को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं।
2: हाँ बेटा, और एक और बात, पत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पहले के समय में पत्र लिखने के लिए बहुत से लोग बहुत सारी बातों का इंतजार करते थे कि आज आएगा पत्र, कल आएगा। लेकिन अभी हम देखो कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन जो पत्र है वो भावनाओं से हमें जोड़ता है, उसी पत्र लिखना अच्छी बात होती है।
1: हाँ माँ, अब मैं एक और पत्र लिखूंगी।
2: वो किसके लिए?
1: वो मेरे प्यारे पापा के लिए।
2: ठीक है बेटा। तो बच्चों, आपने सुना मीरा ने अपने मन की बातें बोलकर नहीं बल्कि लिखकर व्यक्त करना सीखा। हम अक्सर बच्चों से पूछते हैं आज स्कूल कैसा था, होमवर्क किया, खाना खाया, लेकिन श्रोता साथियों कभी कभी हमें यह भी पूछना चाहिए कि आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। बच्चों को अपनी भावनाओं के लिए शब्द दीजिए, उन्हें लिखने का अवसर दीजिए, एक कागज, एक पेन और कुछ मिनटों की शांति बच्चों के मन की बहुत सी उलझनों को आवाज दे सकती है। पत्र लिखना श्रोता साथियों केवल लिखावट सुधारने की आदत नहीं है, यह बच्चों को अपनी भावनाओं को पहचानने, उन्हें समझने और सही तरीके से व्यक्त करना सिखा सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, आज घर में एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। अपने बच्चों से कहिए कि जिस बात को तुम बोल नहीं पा रहे हो उसे लिखकर मुझे बता दो। हो सकता है साथियों उस छोटे से कागज पर आपको अपने बच्चे की दुनिया का एक ऐसा हिस्सा दिखाई दे जिसे आपने कभी देखा ही न हो। साथ ही बच्चों, आपसे कहना चाहूंगी कि मन में बात हो तो उसे दबाकर मत रखिए। कभी माँ को पत्र लिखिए, कभी पापा को और कभी कभी खुद को भी, क्योंकि बच्चों जब भावनाओं को शब्द मिलते हैं तो मन को आवाज मिलती है। इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। विदा तो मैं जरूर लूंगी श्रोता साथियों, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वाकर रेडियो 90.1।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसके साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की। आपकी अपनी साथी मनी।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपड़ो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, किमकी घेरे कोई आपड़ो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
2: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा, तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरावर हंगरे किसान भाई बोना ने आप निपुण जागृति नो राम राम। आप सब हमरे रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM ने आप सबनो स्वागत कर रहा आपड़े आसने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जिम के किसान भाई बोन आप सब ने खबर है कि हमें रोज एक कार्यक्रम खेतीबाड़ी में नवा नवा विषय माते बातें कर रहा। तो आज भी एक नव विषय जोड़ाई रो है। आज नो विषय है जंगल अपड़ो जीवन है ने इन्हें अपने हरते बचा भी सका। तो अना विषय माते आज आपने बातें तो करंगा पर कार्यक्रम की शुरुआत में आपने हमरे लागे इतने मोरे करा आपड़ी बातें। आप सब हम बढ़ते रहो आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागर रेडियो 90.8 FM माते।

किसान भाई बोन गीत तो आयशु पूर्ण अनस गीत आते पड़ा सूटा। आशा करा कि जे भी बातें रही कार्यक्रम खेती बाड़ी में ये आपने गमी होगा। आपने हमारो आजनो कार्यक्रम केवो लाग्यो एना बारा में आप राय सुझाव आली शको आपड़े अना पता माते। आपड़ो पतो है कार्यक्रम खेती बाड़ी वाग रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। आपड़ो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी पले आप मने फोन करी शको आपड़े अना फोन नंबर माते। आपड़ो फोन नंबर है 9460051234। तो किसान भाई बोन फेरी मलंगा अनस कार्यक्रम में एक ना विषय ने हाते तारुदी राम राम।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है चिट्ठी से संदेश तक संचार का बदलता सफर को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, जरा सोचिए आज हमें किसी दूर बैठे व्यक्ति तक अपना संदेश पहुंचाना हो तो हम क्या करते हैं? मोबाइल उठाया, संदेश लिखा और कुछ ही सेकंड में सामने वाले तक बात पहुंच गई। लेकिन क्या हमेशा से संचार इतना आसान था? एक समय था अंजलि, जब किसी अपने तक संदेश पहुंचाने के लिए कागज पर शब्द लिखे जाते थे, फिर उस चिट्ठी को डाक के भरोसे भेजा जाता था और कई दिन इंतजार किया जाता था। डाकिये के आने की आहट ही घर में खुशी भर देती थी। आज वही संदेश मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ क्षणों में पहुंच जाता है। यानी कि चिट्ठी से मोबाइल संदेश तक का सफर केवल तकनीक के बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान के संवाद करने के तरीके में आए बड़े बदलाव की भी कहानी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर बातें रहने वाली है कि चिट्ठी से संदेश तक संचार का बदलता सफर को लेकर। तो बातें ढेर सारी रहेंगी कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: किया बाबू।
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे।
1: खत नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से आवे गली।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं चिट्ठी से संदेश तक संचार का बदलते सफर को लेकर। श्रोताओं, कहा गया है बातों से बनता है रिश्ता, संवाद से बढ़ता है विश्वास, सच्ची बात सही संवाद, यही है स्वराज की आस। आज जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि संचार ने हमारी जिंदगी को कैसे बदला और इस बदलाव के बीच हमें क्या बचाकर रखना चाहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, एक समय था जब चिट्ठी संचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हुआ करती थी।
0: बिल्कुल,
1: किसी दूर रहने वाले रिश्तेदार का हाल जानना हो, नौकरी की सूचना भेजनी हो, किसी को शुभकामनाएं देनी हो या अपने मन की बात कहनी हो, चिट्ठी लिखी जाती थी।
0: जी हाँ,
1: चिट्ठी लिखना भी अपने आप में एक अनुभव था। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। पहले हम कागज लेते थे, कलम उठाते थे और सोच समझकर शब्द लिखे जाते थे। शब्दों में जल्दबाजी कम और भावनाएं ज्यादा होती थी।
0: जी हाँ,
1: कई बार एक चिट्ठी लिखने में काफी समय लग जाता था, लेकिन उसमें लिखी हर पंक्ति अपनेपन से भरी होती थी। जैसे कि बहुत से बार संवाद होता था, अरे मोहन, तुम्हारे हाथ में ये पुरानी चिट्ठी क्या है?
0: जी हाँ।
1: फिर मोहन रामू से कहता कि ये मेरे दादाजी की चिट्ठी है, कई साल पहले उन्होंने बाहर से भेजी थी। रामू, लेकिन अब तो मोबाइल है, चिट्ठी संभाल कर रखने की क्या जरूरत है? तो मोहन उनसे कहता है, जागृति जी, कि मोबाइल में संदेश जल्दी मिल जाता है, लेकिन इस चिट्ठी में मेरे दादाजी की लिखावट है, उनके हाथ से लिखे शब्द हैं, इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे वे मेरे सामने बैठकर बात कर रहे हों।
0: बिल्कुल।
1: रामू कहता है कि बात तो सही है, यानी कि चिट्ठी सिर्फ संदेश नहीं, याद भी होती है। फिर मोहन कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि यह चिट्ठी है उसकी एक खासियत होती है कि यह केवल सूचना नहीं देती बल्कि भावनाओं को भी अपने साथ लेकर चलती है।
0: बिल्कुल अंजलि, चिट्ठियों के दौर में डाकिया भी लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। गांव में डाकिया दिखाई देता तो लोग उत्सुक हो जाते थे, किसके घर चिट्ठी आई है, किसका संदेश आया है, किसी की बेटी की चिट्ठी आई है, किसी की बेटी की खबर आई है, किसी रिश्तेदार का हाल एक कागज का टुकड़ा पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला सकता था।
1: बिल्कुल।
0: उस समय संचार में इंतजार था श्रोताओं, आज हम संदेश भेजते हैं और तुरंत उत्तर की उम्मीद करते हैं, लेकिन पहले जवाब के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। उस इंतजार में भी एक अलग ही आनंद था। समय बदला अंजलि, टेलीफोन ने संचार की दुनिया में बड़ा परिवर्तन कर दिया। अब लोगों को कई दिनों तक चिट्ठी का इंतजार नहीं करना पड़ता है। फोन उठाया और दूर बैठे व्यक्ति की आवाज सीधे कानों तक पहुंच गई। दूर रहने वाले परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात करने लगे। फोन ने दूरी कम कर दी। धीरे धीरे टेलीफोन घर से निकलकर मोबाइल फोन तक पहुंचा। मोबाइल ने संचार को और आसान बना दिया। अब व्यक्ति केवल आवाज से नहीं बल्कि संदेश, तस्वीर और वीडियो के माध्यम से भी जुड़ सकता था।
1: बिल्कुल जागृति जी, लेकिन हम देखते हैं कि इन सारी चीजों में कई सारे परिवर्तन आए हैं।
0: बिल्कुल।
1: पहले के समय में जो चिट्ठी का इंतजार था 15 दिन 10 दिन 12 दिन, और अभी के समय में ये जो मोबाइल आ गया है उसके चलते हम देखते हैं कि हम बहुत सी बार अपने उन लोगों से बात ही नहीं करते। हमें ये लगता है कि कभी भी फोन कर सकता हूँ और कभी भी बात हो जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: इस चक्कर में अपनापन जो था वो कहीं दूर हो गया है। कहना

0: चाहेंगे श्रोता साथियों कि मोबाइल संदेश कुछ सेकंड में दुनिया से जुड़ाव हमारी बहुत सारी चीजों को अलग कर देता है। आज मोबाइल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल और सोशल मीडिया जैसे माध्यम ने संदेश भेजने की गति को बहुत तेज कर दिया।
1: बिल्कुल,
0: पहले जो संदेश कई दिनों में पहुंचा करते थे वो अब कुछ सेकंड में पहुंच सकते हैं। गांव में रहने वाला व्यक्ति शहर में रहने वाले अपने परिवार से तुरंत संपर्क कर सकता है। किसान मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई से जुड़ी सामग्री पा सकता है। किसी आपात स्थिति में तुरंत सूचना दी जा सकती है। संचार की सुविधा ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन हर सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जैसे कि संवाद तेज हुआ है, लेकिन क्या गहरा हुआ है? ये सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जानेंगे आगे भी ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हम एक महत्वपूर्ण सवाल को जान रहे थे कि संवाद तेज हुआ है, लेकिन उसमें क्या इतना गहरापन है? क्योंकि हम देखते हैं जागृति जी कि आज हमारे मोबाइल में सैकड़ों संपर्क हो सकते हैं, हम अनेक लोगों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में उनसे संवाद भी करते हैं? कई बार हम किसी व्यक्ति के सामने बैठे होते हैं, लेकिन हमारी नजर मोबाइल की स्क्रीन पर होती है।
1: बिल्कुल।
0: घर में परिवार के सदस्य साथ बैठे होते हैं, फिर भी हर कोई अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि संचार बढ़ा है, लेकिन बातचीत कम हो गई है। संचार का मतलब केवल संदेश भेजना नहीं, संचार का अर्थ है एक दूसरे को समझना, सुनना और अपनी बात सही तरीके से रखना।
1: बिल्कुल अंजलि, सोशल मीडिया ने संवाद के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। हम देखते हैं कि आज कोई घटना होती है तो उसकी जानकारी कुछ ही समय में बहुत दूर तक पहुंच जाती है। लोग अपने विचार साझा करते हैं, तस्वीरें भेजते हैं, वीडियो बनाते हैं और अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। इससे लोगों को अपनी बात रखने का मंच मिला है। लेकिन यहाँ भी सावधानी बहुत जरूरी है श्रोताओं। हर जानकारी सही हो ये जरूरी नहीं, कई बार अधूरी या गलत जानकारी तेजी से फैल जाती है। इसलिए संदेश को आगे भेजने से पहले ही देखना बहुत जरूरी है कि जानकारी सही है या नहीं। सच्चा स्वराज केवल अपनी बात कहने में नहीं है श्रोताओं, बल्कि सही जानकारी के साथ जिम्मेदारी से बात रखने में भी है।
0: बिल्कुल।
1: गांव में संचार के साधनों ने बहुत बदलाव किया, ये हम सभी देखते हैं अंजलि। पहले किसी सरकारी योजना का महत्वपूर्ण सूचना के लिए लोगों को किसी कार्यालय तक जाना पड़ता था या सूचना किसी व्यक्ति के माध्यम से मिलती थी। आज हम देखते हैं कि मोबाइल के माध्यम से कई जानकारियां आसानी से प्राप्त की जा सकती है। किसान खेती से संबंधित जानकारी ले सकता है, विद्यार्थी ऑनलाइन अध्ययन सामग्री देख सकता है, परिवार दूर रहने वाले सदस्यों से वीडियो कॉल के जरिए जुड़ सकता है। लेकिन तकनीक का लाभ तभी पूरी तरह मिलेगा जब गांव का हर व्यक्ति डिजिटल साधनों का सुरक्षित और समझदारी से उपयोग करना सीख लेगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही बात आती है कि जब हम संचार के बदलते सफर की बात करते हैं तो रेडियो कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि रेडियो ने लंबे समय से लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से जोड़ा है।
1: बिल्कुल।
0: आज भी रेडियो गांव और समुदाय की आवाज बनने की क्षमता रखता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि वागड़ रेडियो 90.8 FM जैसे सामुदायिक रेडियो स्थानीय लोगों की बात को महत्व देते हैं। स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कृति, खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण और समाज से जुड़े मुद्दों पर जागृति जी हम हर रोज बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: रेडियो की सबसे बड़ी ताकत यही है सुनना और जोड़ना, यानी कि यह केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि समुदाय को अपनी बात कहने का अवसर भी देता है।
1: जी हाँ।
0: अगर श्रोता साथी चाहते हैं कि उन्हें अपनी कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो श्रोता साथियों तक पहुंचानी है, तो वो हमारे इस पते पर और हमारे फोन नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा और हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कह सकते हैं कि संचार चाहे चिट्ठी से हो या मोबाइल से, भाषा का महत्व हमेशा रहेगा। हमारे शब्द किसी को जोड़ भी सकते हैं और किसी को दुखी भी कर सकते हैं। इसलिए संदेश भेजते समय हमें सोचना चाहिए श्रोताओं कि हमारे शब्द सामने वाले पर कैसा प्रभाव डालेंगे।
0: बिल्कुल।
1: असहमति हो तो भी सम्मान के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। सच्चा संवाद वही है जिसमें केवल बोलने वाला ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि सुनने वाले की बात को भी सम्मान दिया जाए।
0: बिल्कुल।
1: चिट्ठी और डिजिटल संदेश दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। चिट्ठी में इंतजार था, भावनात्मक जुड़ाव था और व्यक्तिगत स्पर्श था।
0: बिल्कुल।
1: डिजिटल संदेश में गति है, सुविधा है और तुरंत संपर्क की क्षमता है। हमें पुराने साधनों को केवल पुराना समझकर भूलना नहीं चाहिए और नए साधनों को बिना सोचे स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। हमें दोनों से अच्छी बातें सीखनी चाहिए। चिट्ठी हमें भावना और धैर्य की सीख देती है, डिजिटल माध्यम हमें गति और सुविधा देता है। अगर इन दोनों का संतुलन बना लिया जाए तो हमारा संवाद और बेहतर हो सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, अक्सर हम अपनी बात कहने की जल्दी में सामने वाले की बात सुनना भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अच्छा संवाद केवल बोलने से नहीं बनता, अच्छा संवाद बोलना, सुनना, समझना और सम्मान करना है।
1: जी हाँ।
0: परिवार में बच्चों की बात सुनना

0: है, बच्चों के लिए बुजुर्गों के अनुभव सुनना जरूरी है। गांव में एक दूसरे की समस्याओं का सुनना भी जरूरी है। जब हम सुनते हैं तभी हम समझते हैं, और जब हम समझते हैं तभी सही निर्णय ले सकते हैं। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि अब आप भी इस विषय पर जरा सोचिएगा कि आपके घर में सबसे पुरानी चिट्ठी किसकी है। क्या आपके माता पिता या दादा दादी ने कभी आपको कोई चिट्ठी लिखी है? क्या आपने कभी किसी को कोई चिट्ठी लिखी है? और आज हम सबसे ज्यादा किस माध्यम से संवाद करते हैं, फोन, व्हाट्सएप, एसएमएस या आमने सामने बातचीत? आप अपनी राय हमारे रेडियो के माध्यम से हमें जरूर पहुंचाइएगा। आपकी छोटी सी बात हमारे कार्यक्रम को और ज्यादा सामुदायिक बना सकती है।
1: बिल्कुल अंजलि, कहा गया है कि संदेश बदले साधन बदले, बदला संवाद का अंदाज। परिश्तों की गर्माहट रखना, यही है सच्चे स्वराज की पहचान। श्रोताओं, आज संचार की शक्ति हमारे हाथ में है। हम एक संदेश से किसी को खुशी दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं और उपयोग की जानकारी को साझा कर सकते हैं। लेकिन हम गलत जानकारी भी फैला सकते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए डिजिटल संचार में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहते हैं कि बिना सत्यापन के कोई भी खबर आगे न भेजें, किसी की निजी जानकारी बिना अनुमति के साझा न करें, ऑनलाइन बातचीत में भी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें, मोबाइल का उपयोग जरूरी कामों के लिए करें और परिवारों के साथ आमने सामने बातचीत का समय जरूर निकालें। साथ ही तकनीक को अपना साधन बनाए, अपनी जिंदगी का मालिक नहीं। भविष्य में संचार और तेज और तकनीकी हो सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वीडियो संचार और नई डिजिटल तकनीकें हमारे संवाद के तरीकों को और बदलेंगी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलनी चाहिए, वो है मानवीय संवेदना।
0: बिल्कुल शाकृति जी, क्योंकि तकनीक हमें संदेश भेजना सिखा सकती है, लेकिन किसी की भावना समझना हमें स्वयं सीखना होगा।
1: बिल्कुल,
0: तकनीक हमें हजारों लोगों तक पहुंचा सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की बात ध्यान से सुनने का काम हमें ही करना होगा। यही कारण है कि आधुनिक संचार के साथ मानवीय संवाद को बचाए रखना हमारे लिए जरूरी है। श्रोता साथियों, चिट्ठी से संदेश तक का सफर हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि समय बदला, साधन बदले, संवाद की गति बदली, लेकिन संवाद का मूल उद्देश्य आज भी वही है, एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ना। चिट्ठी ने हमें धैर्य दिया, टेलीफोन ने दूरी कम की, मोबाइल ने संवाद को तेज किया, इंटरनेट ने दुनिया को करीब ला दिया और अब नई तकनीक संवाद को एक नए दौर में ले जा रही है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हमें ये याद रखना होगा जागृति जी कि संचार की असली ताकत तकनीक में नहीं, इंसानियत में है। हमारे शब्दों में संवेदनाएं हो, हमारी जानकारी में सत्यता हो, हमारी बातचीत में सम्मान हो और हमारे संवाद में समाज को जोड़ने की भावना हो, तभी संचार वास्तव में सार्थक बनेगा।
1: जी हाँ, तो श्रोताओं, हम सही बात कहेंगे, सही जानकारी साझा करेंगे, दूसरों की बात को ध्यान से सुनेंगे और तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जरूर करेंगे, क्योंकि संदेश भेजना आसान है लेकिन दिल तक पहुंचना जरूरी है। तकनीक बदल सकती है अंजलि, लेकिन इंसानियत का संवाद नहीं बदलना चाहिए। इसी सोच के साथ आज के सच्चा स्वराज कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, मानसिक स्वास्थ्य का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर। जी हाँ श्रोता साथियों, हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर भोजन, व्यायाम, दवा, साफ सफाई और बीमारी से बचाव की बात करते हैं, लेकिन क्या श्रोता साथियों, आपने कभी सोचा है कि हमारे मन की स्थिति का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है?
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मनीषा, जब हम मन से खुश होते हैं, शांत होते हैं, तो हम अपने काम को उत्साह से करते हैं, लेकिन जब मन लगातार तनाव, चिंता, डर या परेशानी में रहता है तो उसका असर नींद, भूख, ऊर्जा और शरीर की कार्य क्षमता पर भी दिखाई दे सकता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए कहा जाता है कि मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं और अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का शुरुआती गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, मानसिक स्वास्थ्य का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर। अंजना जी, हम अक्सर अपने स्वास्थ्य की बात करते समय शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। हमें बुखार हो तो हम दवाई लेते हैं, चोट लग जाए तो इलाज करवाते हैं, कमजोरी महसूस हो तो खाने पीने में सुधार करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य केवल शरीर का नाम नहीं है साथियों, हमारा मन भी हमारे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे विचार, भावनाएं, तनाव, चिंता, डर, खुशी और दुख का अक्सर हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जब मन शांत और खुश रहता है तो हम अपने रोज के काम है वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं, नींद अच्छी आती है, भूख ठीक रहती है और शरीर में स्फूर्ति है वो बनी रहती है। इसके विपरीत श्रोता साथियों, जब मन लंबे समय तक तनाव, चिंता, परेशानी में रहता है तो उसका असर शरीर पर भी दिखाई देने लगता है।
1: बिल्कुल मनीषा, मानसिक स्वास्थ्य इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई मानसिक बीमारी है या नहीं। हमारा मानसिक स्वास्थ्य इस बात से जुड़ा हुआ है कि हम तनाव, परेशानियों, रिश्तों, जिम्मेदारियों और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना किस तरह करते हैं। कभी उदास होना, चिंता होना या किसी बात से परेशान होना जीवन का सामान्य हिस्सा है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अगर तनाव या चिंता लंबे समय तक बनी रहे और हमारे रोजमर्रा के काम, नींद, भूख और रिश्तों पर असर डालने लगे तो हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे हम शरीर में होने वाले बदलावों को नजरअंदाज नहीं करते, वैसे ही मन में होने वाले लगातार बदलावों को भी समझना बहुत जरूरी है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारे मन और शरीर का संबंध बहुत गहरा है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर भी उस स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि व्यक्ति को बेचैनी महसूस हो सकती है, नींद प्रभावित हो सकती है, भूख में बदलाव आ सकता है, सिर दर्द या शरीर में थकान भी महसूस हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: कई बार व्यक्ति कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना थका हुआ क्यों रहता हूँ। वह यह नहीं समझ पाता कि लगातार

0: थकान का एक कारण हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य को केवल श्रोता साथ शरीर तक सीमित करके देखना सही नहीं है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि आज की जिंदगी में तनाव ही वो आम समस्या बन चुकी है। काम का दबाव, पढ़ाई की चिंता, आर्थिक परेशानी, परिवार की जिम्मेदारियां, रिश्तों में तनाव और भविष्य को लेकर चिंता जैसी बातें हैं वो कई बार हमारे मन में चलती रहती हैं। थोड़ा बहुत तनाव है श्रोता साथी, वो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है और व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता तो हम देखते हैं कि उससे हमारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। लगातार तनाव के कारण नींद खराब हो सकती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है, सिर दर्द, पेट की समस्याएं वो हो सकती हैं और शरीर में बेचैनी जैसी समस्याएं हमें हो सकती हैं। इसलिए श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि तनाव को नजरअंदाज करने के बजाय उसके कारण को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ मनीषा, आज गांव हो या शहर, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता है। घर की चिंता, आर्थिक परेशानी, खेती किसानी की चिंता, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी का दबाव, पारिवारिक मतभेद, इन सब का असर मन पर पड़ सकता है। अगर तनाव लगातार बना रहे तो व्यक्ति की नींद खराब हो सकती है, वह चिड़चिड़ा रहने लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और काम में मन नहीं लगता। नींद ठीक न हो तो अगले दिन शरीर में थकान महसूस हो सकती है, भूख भी कम या ज्यादा हो सकती है। इस तरह श्रोता साथियों एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देने लगती है। तनाव, नींद में परेशानी, थकान, चिड़चिड़ापन, काम में मन न लगना, इस चक्र को समझते रहना, पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। और एक बार ये दोनों चीजें प्रभावित हो गई तो समय रहते इन सारी चीजों में सुधार करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोता साथियों जितना हो सके खुश रहने की कोशिश कीजिए और अपने मन को हमेशा स्वस्थ रखिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और आगे भी इस विषय को लेकर हमारी बातें जारी रहेंगी। कार्यक्रम के माध्यम से आगे भी हम जानेंगे कि मन खुश तो शरीर कैसे सक्रिय रह सकता है और हमें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, तो ढेर सारी बातें जरूर रहेंगी। लेकिन कार्यक्रम में अभी एक और गीत के साथ हम मनोरंजन कर लें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से हमारा मन स्वस्थ रहता है, तो तन स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है। यही श्रोता साथियों बात करें, अच्छी नींद भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का हिस्सा है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि मन को आराम देने के लिए नींद बहुत जरूरी है। जब हम लगातार चिंता में रहते हैं तो सोने के समय भी हमारा दिमाग चलता रहता है, कल क्या होगा, यह समस्या कैसे सुलझेगी, घर का काम कैसे पूरा होगा, ऐसी चिंताएं नींद को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि सोने और जागने का समय लगभग नियमित रखें। सोने से पहले कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए रखें। दिन भर की परेशानियों को लेकर देर रात तक जागते रहना समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि अगले दिन की थकान भी बढ़ा सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, इन सारी चीजों का ध्यान रखें। साथ ही मन और भूख का भी संबंध है। क्या आपने कभी देखा है श्रोता साथियों कि बहुत ज्यादा तनाव में कभी भूख बिल्कुल नहीं लगती और कभी बार बार कुछ खाने का मन करता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति हमारे खाने की आदतों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए तनाव के समय भोजन को छोड़ना या केवल चाय नाश्ते के सहारे दिन निकालना सही नहीं है। संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित दिनचर्या शरीर के साथ साथ मन को भी सहारा देती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों हम देखते हैं कि कई बार हम अपनी परेशानी वो किसी को बताते ही नहीं है। हमें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, हमें कमजोर समझेंगे, लेकिन हर परेशानी अकेले सहन करना जरूरी नहीं है साथियों।
0: बिल्कुल,
1: अगर मन में कोई चिंता है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात की जा सकती है। परिवार का सदस्य, दोस्त, शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप विश्वास करते हो, उससे अपनी बात साझा करने से अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारा मन है वो हल्का हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: अपनी भावनाओं के बारे में बात करना कमजोरी नहीं है साथियों, बल्कि अपनी परेशानी को पहचानना और मदद मांगना हमारे लिए समझदारी हो सकती है। साथ ही अंजलि जी बात करें कि मानसिक स्वास्थ्य और परिवार की, तो साथियों हम देखते हैं कि परिवार का व्यवहार भी मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर डालता है। घर में अगर एक दूसरे की बात सुनी जाए, सम्मान से बात की जाए और जरूरत के समय सहयोग दिया जाए, तो अंजलि जी हम देखते हैं कि हमें भावनात्मक सहारा है वो मिल सकता है। किसी व्यक्ति को हर समय डांटना, उसकी तुलना दूसरों से करना, उसकी परेशानी को छोटा समझना उसके मन पर बुरा असर डाल सकता है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें अपने परिवार के सदस्यों से यह पूछना चाहिए आप कैसे हो, और उसकी बातें हमें ध्यान से सुननी चाहिए। कई बार श्रोता साथियों किसी व्यक्ति को समाधान से पहले केवल किसी व्यक्ति की जरूरत होती है, तो उसकी बात हमें शांति से सुन लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए रोज थोड़ा शारीरिक सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास महंगे साधन हो। सुबह या शाम के समय पैदल चलना, घर के काम करना, खेत में सक्रिय रहना, हल्का व्यायाम या अपनी क्षमता के अनुसार शारीरिक गतिविधि करना, ये सभी रोजमर्रा की सक्रियता का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो व्यायाम का तरीका अपनी स्थिति के अनुसार तय करना चाहिए। इसी के साथ श्रोता साथियों, हमारे समाज में कई बार व्यक्ति परेशान होता है लेकिन किसी से अपनी बात नहीं कहता। वह सोचता है लोग क्या कहेंगे, मैं अपनी परेशानी बताऊंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हर परेशानी अकेले सहना जरूरी नहीं है। परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य, मित्र या ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसके सामने आप सहज महसूस करते हो। कई बार केवल अपनी बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति के सामने रखने से भी मन का बोझ हल्का हो सकता है। और अगर परेशानी लगातार बनी रहे या रोजमर्रा के जीवन पर गंभीर असर डाल रही है, तो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सामाजिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना भी उचित कदम होगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को एक और गीत के साथ मनोरंजन करवा दी।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने कहा था कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, अंत में आपको यही कहना चाहेंगे कि हमारा शरीर और हमारा मन दो अलग अलग हिस्से जरूर हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए नहीं है। जब मन परेशान होता है तो शरीर में थकान, नींद में बदलाव, भूख में बदलाव और बेचैनी जैसे संकेत दे सकता है। वहीं जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, पर्याप्त आराम लेते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं और सक्रिय रहते हैं, तो यह हमारी मानसिक सेहत के लिए भी मददगार हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य को केवल बीमारी न होने के रूप में न देखें। स्वास्थ्य का मतलब अपने शरीर के साथ साथ अपने मन की देखभाल भी करना है। अगर आज आपका मन परेशान है तो खुद को कमजोर मत समझिए, अपनी परेशानी को पहचानिए, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मदद लीजिए। मन की परेशानी को छिपाने से वह हमेशा खत्म नहीं होती, लेकिन उसे पहचान कर सही मदद लेना बदलाव की शुरुआत जरूर हो सकती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो इन्हीं स्वास्थ्यप्रद बातों के साथ आज के कार्यक्रम से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रही, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार।

0: माटी में जमीन हूँ और माटी टकीस जानी जाऊँ हूँ। मैं खेत हंबारिया बीज बोया मैं पसंद बहाई वो मिश्रम करूँ तो पसे बाप दादा ने जमीन माते मारो अधिकार किन नती सूरी जन्म टकीस हकदार है कानून ने आ बात मानी है न पन्या पूटे न हक को ले सके न रिवाज न सच ने बदली सके बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार सूर्य नो हक इन्हें पहचान
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर
1: हिंडो स्कूल जा अपड़े अपना भी अपना पूरा करो
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
1: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवावारा मार हित्ता भाई बुन ने आपनी बुन मनीषा
1: ने आपनी बुन अंजलि नु
0: राम राम। होवे भाई उन बुनो आप सब हमले रिया हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत करे हो हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाई उन बुनो लेने हाजिर थे गये हो कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो मनीषा बुन आज अपने कार्यक्रम में भाई उन बुनो तक की बातचीत में विषय है के सरकारी योजना की जानकारी तो अपना ने घणी वक्त मिली सा पर आवेदन करवा में घणा कनी परेशानी आवे है ने आ समस्या केम थाय है ने समाधान हूँ थई शके।

सेहत नो राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: सगुनो घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है मानी दुआ पितानी उम्मीद निसोरनी मुस्कान
1: होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो हेलमेट पहरो सीट बेल्ट लगाड़ो एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

बहन बोनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा कर रहा हूँ कि आज की सभा में प्रसारित हवा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या, इन्हें बल्ले आप मने राय सुझाव आली सको हमारे अणपता माते। अमरु पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। अमरु पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9414082643। तो भाई बोनू, आ तो हती आपणे आजनी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा। तारुदी आपनी बोन अंजलि नू राम राम, राम राम।